0: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
1: वरिष्ठ हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
2: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
1: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोड्नी सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
3: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
4: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
5: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
6: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
7: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
10: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
0: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच। फोन नम्बर 082-5563-218।
11: दाङमै विशेषज्ञ सेवा एउटै छानामुनि। सेवा सुलभ दरमा प्रदेश नम्बर 5 कै उत्कृष्ट नाक कान घाँटी तथा डेन्टल केयर सेन्टर खुराही दाङमा।

वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: वायरनेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुवर्ण बुढ़ामगर द्वारा प्रत्येक दिन

0: बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

0: प्रोडक्ट कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोटोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अड्गुरी।

0: एक्सचेंज मेला में जम्मै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस्। जम्मै वैल्युएशन, जम्मै कैश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम, शहीद गेट गुराही दाम।
3: संपर्क फोन 082-562-4023। संपर्क मोबाइल नंबर 98-578-30-151, 98-478-33-133 र 98-686-37-244।
4: घुम जाई धारपानी कार्यक्रम में उपस्थिति लाग हार्दिक अनुरोध। धार्मिक पुरातात्विक को प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ओ विश्व का ढ्यांग त्रिशूल रलक मंदिर का रूप में प्रसिद्ध घोराई उपमहानगरपालिका वडा नंबर 5 धारपानी स्थित पांडवेश्वर महादेव मंदिर में लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटल का आयोजना ओ स्थानीय संघ संस्थाओं का नक सहकारी में यह मिति 2083 असार 13 गते शनिवार सम्पन्न कर्जिना घुम जाई धारपानी कार्यक्रम में सक्कु झाइन लाग उपस्थिति लाग अनुरोध कर चाहटी। संचालन कर्जिना कार्यक्रम परम्परागत सांस्कृतिक झाँकी ओ नाच प्रदर्शन, मावी स्तरीय लोक नृत्य प्रदर्शन, स्थानीय उत्पादन प्रदर्शन ओ रैथाने परिकार उत्सव। कार्यक्रम में सहभागी बनी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन करी आयोजक लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन तथा यातायात मंत्रालय, पर्यटन विकास परिषद बुटोल रूपन्देही।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद को आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोर्खा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसिया, बाल रोग, थायराइड, प्रेशर, सुगर, छाती, मुंडू, नाक, कान, घाटी, टाउको, गैस्ट्रिक अल्सर, फिजियोथेरापी, दूरबीन विधि वाला ऑपरेशन लगाए स्वास्थ्य संबंधी सब

0: कमर दुख्ने हार्ट जोरिंग सम्बन्धी अपरेशन सेवा
1: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा
2: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
3: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा
1: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा
3: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा
4: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा
1: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू
5: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई जाँच फोन नम्बर 082563218

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

आकाश गंगा को अवतरण, हिमाली जलधारा को आकर्षण, जनदैला में ज्ञान धारा को प्रसारण, कार्यक्रम त्रिवेणी, अन्वेषण का शिखर, खोज का गल्छी र यात्रा का पाइला, कार्यक्रम त्रिवेणी। हाम्रो मौलिकता कतातिर गयो, मूलस्थली हो कता, भाषा भूषण भेष संस्कृति कला आदर्श शैली कता, कस्मा छन् थरका थला तल हुँदा थारू कसुरी भयो, जेठो वेद हिमालय हो सकलको कैलाश साक्षी छ, योगी नरहरिनाथ। नमस्कार, प्रकृतिको प्रेरणा, पुर्खाको पथ र

पंख माग परे वासु रंग गुणता को पंख माग परे वासु रंग गुणता पहली देव ज्योति पुंज हो पंख माग पर

0: best product haru coconut coconut vita milk butter fat cream milky butter tatha digestive whole wheat biscuit
1: hera hera hera jo ho hamro choice koto ko digestive ra cookie cha hai nice
0: adguri
2: आकाश गंगा को अवतरण हिमाली जलधारा को आकर्षण जनदैला में ज्ञान धारा को प्रसारण कार्यक्रम त्रिवेणी अन्वेषण का शिखर खोज का गल्छी र यात्रा का पाइला कार्यक्रम त्रिवेणी।